0: After that, we'll hear from President Trump himself, and all the other leaders here are likely to brief their individual press corps. But the general message is that they are supportive of this deal, not because they like what President Trump did at the start of this. Most of them really don't think this war was a good idea, but because the economic effects are so punishing that they want to see the war ended as quickly as possible, and this memorandum of understanding would do that.
1: All right, thank you very much. James Bayes live for us from the G7 summit there in France. And let's go to our chief US correspondent, Alan Fisher, at the White House. Now, Alan, assuming the deal does get signed on Friday, will that put the Iran issue to bed for Donald Trump, at least for a while?
2: No. The people are still going to be talking about it. Clearly, you have the signing on Friday, which is still scheduled, and then there's going to be 60 days of negotiation. And every time Donald Trump appears in public during those 60 days, people will ask, how are the negotiations going with the Iranians? And of course, that could be extended. If both sides agree they need more time, then it could go on beyond the 60 days. And people will be analysing the impact on the economy over the next 60 days. We saw that oil prices have come down, but there's a tail to the oil prices being so high. So that will take a while to work its way into the US economy. Oil prices will continue to stay high for ordinary consumers. That has an impact on other prices.
3: The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories, we're building everything. And Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that, jobs. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to thank you very much. Great to be with you.
4: Thank you. Rashpati ji, aap se mil karke bahut khushi ho rahi hai, aur pichle varsh hum Washington mein mile the. Uske baad hamare sambandhon mein ek nayi gati aayi hai. नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं
5: मिस्टर प्रेसिडेंट इट्स अ प्लेजर टू मीट यू हियर इन एविया वी हैड एन एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव मीटिंग इन वॉशिंगटन लास्ट ईयर एंड सिंस देन वी हैव गिवन न्यू स्पीड एंड न्यू एनर्जी टू आवर रिलेशंस एंड वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ नंबर ऑफ एरियाज
4: और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं
5: एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी दैट आवर टीम्स हैव ऑल्सो बीन वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड एंगेजमेंट एंड दे हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द टारगेट्स दैट वी हैड सेट फॉर आवरसेल्व्स लास्ट ईयर
4: एक्सलेंसी पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ
5: Mr. President, I commend you for your leadership on the progress that has been made in the efforts to restore peace in West Asia.
4: आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी
5: Thanks to your efforts, Mr. President, new hope for peace and stability in the region has been rekindled, and I'm confident that this will lead to a long-standing peace in the region.
4: Excellency, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है.
5: Mr. President, you and I agree that keeping the Strait of Hormuz open is vital for the global economy.
4: एक्सेलेंसी हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए
5: इंडिया हैज कंसिस्टेंटली एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड वी शुड वर्क टुगेदर एंड प्लेस अ पर्टिकुलर एम्फसिस ऑन दैट
4: एक्सेलेंसी आप जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है
5: मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर अवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड इंडियन सी फेयरर्स इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स आर वर्किंग एंड देयर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज अक्रॉस ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड रूट्स इंक्लूडिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड देयर सेफ्टी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू अस
4: एक्सेलेंसी समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेयरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी
5: मिस्टर प्रेसिडेंट यू मेड ट्रेमेंडस